0: आकाशवाणी समलपुर हेलो अनुरोध कार्यक्रम
1: हाँ नानी नमस्कार
0: नमस्कार भाई किए कहते
1: मुई लोकनाथ साहू भालुबाल विजयपुर बरगड़ नु कहू जाए
0: लोकनाथ भाई आपन को आज कार्यक्रम को खूब सम्मान एवं आदर सहित स्वागत जनावी
1: प्रथम दादा गोटे कथा लागबे करम सानी साहू
0: आज्ञा आग को गीतटा शुणबे कह दियंतु तापर आमे कथा लागिबा
1: राया हिंदुस्तानी रो हमर पुछो जरा पुछो से गीतटा दे देबे
0: ठीक अछि आउ कुहंतु नमस्कार भाई
2: हाँ नमस्कार नानी
0: हाँ आपण किए कहते परिचय दियंतु
2: ग्राम चिरंगामुंडा पोस्ट लामुंडा थाना विजयपुर जिला बरगंज नानी
0: आज्ञा आपण को मध्य आज कार्यक्रम को खूब सम्मान सहित स्वागत जनावी आउ कार्यक्रम को फोन करिसेंति सेति पई अशेष धन्यवाद जनावी आउ केमती अछंति कुहंतु
2: मैं भलो छ नानी आउ आपण माने केनता अछो
0: हाँ आमे भी भलो अछु एमिति भगवान का कृपारु आमे सबुबेले आमे समस्ते भलो थाउ आउ भलो सब काम करिबा आउ केमति कोन काम सब चली छि
2: हां काम सब सब त ठीक चली छि नानी चार बार सब काम चली छि
0: आज्ञा
2: नानी हम गोटे मतामत छे कहबी नानी
0: आज्ञा कुहंतु
2: ए आमार जन आकाशवाणी समलपुर स्टूडियो केना मीडियम वेव रे टिके साउंड कम होछि कि नानी
0: स्टूडियो मीडियम वेव रे कम आसु छि कार्यक्रम
3: शीतल
0: आज्ञा आज्ञा शीतल षष्ठी यात्रा देखि आसीथिले
3: हां बताली जे दिन शीतल षष्ठी यात्रा देखि
0: आज्ञा
3: शिव विवाह सबने बराती देखलो आ सब यात्रा बहुत मजा मजलिस थला आनी आ छोड़लो
0: आज्ञा आ हम संबलपुर आकाशवाणी संबलपुर तरफ जो माने हमर हेथिला सीधा प्रसारण शीतल षष्ठी यात्रा रो सुनिले
3: पण संबलपुर जे सीधा प्रसारण सब जिनिस माने सब सुनलो
0: आज्ञा आज्ञा
3: आउ जन प्रोग्राम पति भी जेंडा दिया हला किते नाच संगीत रूप गिटा मन सब सुनु सुना ने
0: ठीक अछि धन्यवाद भाई आपन हमर ई कार्यक्रम सब सुनु चंती आपन को पाई तो कार्यक्रम गुडी को प्रस्तुत करा जाउ छी एवं आपन को मतामत भी आमे निश्चित होरे चाहि थाउ आउ ठीक अछि ताले ए गीतटी सुनिबा
1: आया डेडिकेट करमा हमर स्पेशल डेडिकेट हमर गोविंद मेहर रो आज बर्थडे
0: ताहले कार्यक्रम तरफ़ एवं आकाशवाणी तरफ़ गोविंद भाई की जन्मदिन अनेक अनेक शुभेच्छा जनाउछु आज्ञा
1: आउ सब श्रोता मन को हम डेडिकेट है
0: निश्चित भाव रे डेडिकेट कर दबा
2: हां नानी नानी को कहले के नानी
0: आज्ञा
2: हां एरा

0: no sabes lo que nos podrán. Te verán mejor. Suba al tabú. Que es una patel. Narayana mejor. Govinda mejor. Yo soy Paikar. Habla canto. Voy. Bharta Chalan voy. Rajendra voy. Tabare. Prasanta Kumari. Puspanjali Kumari. Shankar mejor. Devraj mejor. Lingraj mejor. Sonna Prabhakara. Nagapatra. Dikya Gopal. Gurusabha Goyer. Chitrasan Sabar. Manoj Patel. Kema Sagar Sahu. Himancham Sabar. Akash Sahu. Vikas Sahu.
1: बहुत सुंदर आपण कहिथिबा ए समस्त श्रोता भाई भोणी मानको ए गीतटी डेडिकेट कर दोचो आ एहा गर्वर विषय जे आमरो श्रोता भाई भोणी माने आकाशवाणी को ने केते सुंदर भाबरे बांधी होई चंती स्नेह श्रद्धा रा सहित सेटा भी बहुत बढ़िया कथा निश्चित भावरे ताहले गीतटी सुनिबा
2: हां
1: आज्ञा नमस्कार।

0: आकाशवाणी संबलपुर, हेलो, अनुरोध कार्यक्रम।
1: हेलो हेलो मैम, हेलो आकाशवाणी संबलपुर, हेलो मैम नमस्कार, गुड मॉर्निंग।
0: वेरी गुड मॉर्निंग, किए कहुतले भौणी?
1: मैम फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी हैप्पी संडे एंड समस्तंगो हैप्पी म्यूजिक डे। जे वर्ल्ड स्ट्रेस फ्री थिबो से स्ट्रेस मन करो थिबो से म्यूजिक सुनंतु, वन काइंड ऑफ थेरेपी काम दबो। एंड आज हैप्पी योगा डे भी समस्तंगो, योगा दिवस रे बहुत बहुत शुभकामना अभिनंदन। योगा करंतु निरोग रहंतु। एंड आ गोटे कथा हला हैप्पी फादर्स डे टू माय डैड, आई लव माय डैड वेरी मच, ही इज बेस्ट। एंड दिस इज मामा मिश्रा, आई एम फ्रॉम भुवनेश्वर।
0: अरे वाह, आउ को गीत सुनिबे कहले
1: मैम? आपण गोटे दादी को माने बापा को ऊपर गोटे किछि गीत आपण को पसंद रे डेडिकेट कर दियंतु, मो तरफ मो भाईना तरफ दादी को पै।
0: अच्छा
1: यस मैम, आउ किछि कहिबे?
0: आउ केमती अछंती आपण?
1: मैम आपण तो फर्स्ट टाइम कथा होची, बहुत भल लागला आपण मते चांस देइछंती, एते सारा आज दिन अछि समस्त को मो कहि पाली, विश कर पाली। एंड मो बहुत भल अछि, ठीक गरम कमीची एंड मते लागु छि एसी एसी रे मो अछि। आपण केमती अछंती?
0: अरे वाह, आपण एसी रे अछंती, बहुत बढ़िया, गरम तो सेमती होउची। अच्छा
1: आपण आपण केमती अछंती?
0: हां भल अछि। राजा भैया कथा चित्र रे गीतटी सुनिबा?
1: ओके मैम आपण सुनै दियौ तो डेडिकेट कर देबे मो फैमिली को, ठीक अछि?
0: ठीक अछि, आपण कहिथिबा आपण को परिवार को एवं समस्त को आपण कर जिए जिए साथी अछंती तांको ए गीतटी डेडिकेट कर दउ छु।
1: थैंक यू मैम,
0: धन्यवाद भौणी आपण फोन करी चंदी सेति पई कार्यक्रम तरफ रु एवं समस्त तरफ रु हमर आकाशवाणी तरफ रु अशेष धन्यवाद जणाउ छी।
1: थैंक यू मैम, रहली मैम, नमस्कार
0: नमस्कार।

0: ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଘଡ଼ିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସକାଳ 10:00 ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତୁ, ରିଲେ କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: ନମସ୍କାର, ଆକାଶବାଣୀ ସମାଚାର କେ ସାଥ ମୈଁ ରବି କପୁର। देश भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव रोकने के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बताया।
2: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डूज और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
1: अमेरिका में डेलावेयर के गवर्नर मैथ्यू मेयर ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों से स्वस्थ जीवन शैली के लिए योगाभ्यास करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रे का जलावतरण किया। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री का संबोधन।
3: विकसित भारत और विकसित भारत से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है। कुछ देर पहले हैं INS अग्रय, INS दुनागिरी और INS संशोधक को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है।
1: इन पोतों का विकास नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोतों का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा में 22,79,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षा भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में आयोजित की जा रही है। परीक्षा में अंग्रेजी तथा 12 भारतीय भाषाओं में उत्तर देने का विकल्प है। परीक्षा से पहले कल राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मॉक ड्रिल का अभ्यास किया। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड। श्री सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत के समुद्री हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि आज वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच रहे हैं। ये वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान में इजरायली हमलों के कारण हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की घोषणा कर दी है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 60 दिन के भीतर ईरान के साथ अंतिम समझौता न होने पर जलमार्ग पर टोल लगाने की बात कही है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज संपन्न हो रहा है। 2 वर्ष में एक बार होने वाला यह महोत्सव इस वर्ष 15 जून को शुरू हुआ था। समारोह में वृत्त चित्र, लघुकथा, एनिमेशन और AI फिल्में प्रदर्शित की गईं। आज रात एक भव्य समारोह के साथ इसका समापन होगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, ओडिशा, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी, रायलसीमा, कराईकल, केरल और माही में भी मंगलवार तक तेज वर्षा हो सकती है। इस बीच विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में अगले 3 से 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर लू चलने की आशंका व्यक्त की है। बिहार और तेलंगाना में भी आज लू चल सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हिंदी ते संवाद सुनले रिले करी सुनालो आकाशवाणी दिल्ली केन्द्र नो आपण माने कार्यक्रम सुनुछन आकाशवाणी संबलपुर केन्द्र नो मूल करुछु ओडिया सिनेमा गीतर कार्यक्रम पहला हेला मोते प्रेम जर सिनेमार गीतटा सुनुन गाइछन सब्यसाची मिश्र गीत लिखिछन अरुण मंत्री संगीत दिछन प्रेम आनंद।

0: ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର କେନ୍ଦ୍ରଠୁ। ଏହେଦେ ସମିଆ ଦିନର 11 ବଜିବାକେ ଯାଉଛେ। ହିନ୍ଦୀଥି ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁନ୍ ରିଲେ କରି ପ୍ରସାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରଠୁ।
1: ନମସ୍କାର, ଆକାଶବାଣୀ ସମାଚାର କେ ସାଥ ମୈଁ ଜାଗୃତି ଶର୍ମା। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में नौसेना के तीन स्वदेशी पोतों आईएनएस दुनागिरी, संशोधक और अग्रय का जलावतरण किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पोत रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को दर्शाते हैं।
2: ये तीनों पोत भारत के तीन महत्वपूर्ण संकल्पों के भी प्रतीक हैं। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आईएनएस दुनागिरी, अग्रय और संशोधक का नौसेना में शामिल होना भारत की समुद्री क्षमता के विकास में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पड़ाव साबित होगा। उन्होंने कहा कि ये तीनों पोत अब भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज देश और विदेश में मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बताया।
2: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डूज और डोंट सिखाता है और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में योग किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने कहा कि योग भारत की महान परंपरा का प्रतीक है जो स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योग अभ्यास में भाग लिया। इस अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा आज हो रही है। ये परीक्षा देश के 551 और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जा रही है। परीक्षा में अंग्रेजी तथा 12 भारतीय भाषाओं में उत्तर देने का विकल्प है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें।
3: नीट आज पुनः परीक्षा होने जा रहा है। मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। आज लगभग 22 लाख विद्यार्थी नीट में बैठने वाले हैं। निर्भय होकर बैठे, चिंता मुक्त होकर बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले तीन टैंकर सफलतापूर्वक होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। अमरीका और ईरान के प्रतिनिधि आज वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच रहे हैं। ये वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान में इसराइली हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा कर दी है। श्रीलंका के दांबुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ए ने 12 ओवर में 2 विकेट पर 144 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यही थिला आजिर हिन्दी कथाचित्र गीतर कार्यक्रम वातायन आकाशवाणी सम्बलपुर। निजामको गीत रचना एवं ज्योतिन्द्र दत्तको संगीत निर्देशनहरू सुनन्तु ओडिया लघु संगीत। प्रथमे निवेदिताको कण्ठले यही गीतटी सुनन्तु।

0: ନିଜାମଙ୍କ ଗୀତ ରଚନା ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିନ୍ଦ୍ର ଦତ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଲଘୁ ସଙ୍ଗୀତ ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଦିନ ଗୋଟାଏ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତୁ। ରିଲେ କରି ପ୍ରସାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: ନମସ୍କାର, ଆକାଶବାଣୀ ସମାଚାର କେ ସାଥ ମୈଁ ଜାଗ୍ରତୀ ଶର୍ମା। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना के तीन पोत दुनागिरी, संशोधक और अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए हैं।
2: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है। इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। नौसेना के अनुसार इन तीनों पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा

0: कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज देश और विदेश में मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का उत्कृष्ट साधन बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में योग किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योग अभ्यास में भाग लिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्य भर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। पुदुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने अपनी पत्नी के साथ बीच रोड पर एक कार्यक्रम में योग किया। उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योग 365 पुस्तिका का विमोचन भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। देश और विदेश के विभिन्न शहरों में 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश सुबह 11 बजे से शुरू होकर दोपहर 1:30 बजे तक चलेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं, जहां अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता होने की संभावना है। वहीं ईरान के प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता का आगे बढ़ना मुश्किल होगा। ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कालीबाफ करेंगे। श्रीलंका के दाम्बुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ए ने 41 ओवर में 5 विकेट पर 288 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आपण मने कार्यक्रम सुनु छंती आकाशवाणी संबलपुर केंद्ररु। শুণন্তু সম্বলপুরী গীত প্রথমে দুঃখী শ্যাম ত্রিপাঠী এবং প্রেমমঞ্জরী আচার্য কণ্ঠ দিয়ে এ গীতটি শুণন্তু। গীত রচনা প্রহ্লাদ নায়ক।

0: के आसपास के क्षेत्र में जनजातीय वनवासी संस्कृति की प्रचुर उपस्थिति है। इस विश्वविद्यालय से जुड़े रानी दुर्गावती के नाम की सार्थकता सभी सिद्ध होगी जो सभी भागीदारी जनजातीय समाज और वंचित तथा पिछड़े वर्ग विशेषकर इन वर्गों की बेटियों की सशक्तिकरण के लिए प्रयास करें।
1: U.S. Vice President J.D. Vance and Iranian Parliament Speaker M.B. Ghalibaf have arrived in Switzerland to hold peace talks as Tehran closed the Strait of Hormuz again, citing Israel-Lebanon conflict. The United States said that they will set up the structure of negotiations with Iran and potentially start to make progress on nuclear issues. A delegation of Tehran from Tehran, led by Parliamentary Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf, has named Minab 168 in tribute to the 168 victims of the tragic school strike. The India Meteorological Department, IMD, has forecast extremely heavy rainfall over sub-Himalayan Bengal and Sikkim during the day. The weather agency has predicted that Gujarat, central Maharashtra, Marathwada, Saurashtra and Kutch will witness isolated to scattered rainfall till Friday. In cricket, India A have set a target of 378 runs for host Sri Lanka A in the final match of the Tri-Nation A Series 2026 in Dambulla. After being invited to bat first, India's opening pair of Priyansh Arya and Vaibhav Suryavanshi made a promising start to the innings. Meanwhile, Vaibhav Suryavanshi smashed the fastest half-century of List A format in just 11 balls. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi emphasizes yoga's role in providing pathway from mental to physical wellness, leads the nation observance of 12th International Day of Yoga in Kolkata. Prime Minister Modi commissions 3 indigenously built Indian Navy platforms in Kolkata, says special steps being taken to enhance domestic defense production capacity. NEET UG re-examination underway at over 5,000 centers across country and 14 centers abroad amid tight security. U.S. Vice President J.D. Vance and Iranian Parliament Speaker M.B. Ghalibaf arrive in Switzerland to hold peace talks as Tehran closes Strait of Hormuz again. IMD forecasts extremely heavy rainfall over North Bengal and Sikkim today. And in cricket, India set a target of 378 for Sri Lanka in final match of Tri-Nation A Series in Dambulla. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष एमबी कलिबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से बंद किया। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 378 रन का लक्ष्य दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 11 गेंदों में लिस्ट ए प्रारूप का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
3: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने कहा कि योग भारत की महान परंपरा का प्रतीक है जो स्वस्थ संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाता है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
4: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। उन्होंने कहा कि कम उम्र से योग शुरू करने पर इसके अधिक लाभ मिलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योगाभ्यास में भाग लिया। राष्ट्र राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। श्री मांडविया ने कहा कि योग न केवल भारत की विरासत है बल्कि विश्व को दिया गया एक अनुपम उपहार है।
5: योगा केवल हमारी विरासत नहीं है, दुनिया को दिया गया एक उपहार ही है। और इसलिए जब सारी दुनिया 21 जून को योगा दिन मनाती है, तब हम सभी भारतीय योग से जुड़े हर दिन में योगा करके अपने स्वयं को मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए प्रयास करिए।
2: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में भाग लिया। ब्रह्मकुमारी संस्था द्वारा लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में लगभग 20,000 लोगों ने योग, प्राणायाम और राजयोग का अभ्यास किया। उधर पंजाब में विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों और संस्थानों ने योग सत्र आयोजित किए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जालंधर के निजी विश्वविद्यालय में आयोजित योग सत्र में भाग लिया। उन्होंने राज्य के लोगों, विशेषकर युवाओं से नशा न करने का आग्रह किया। महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने लोकभवन और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जुहू तट पर आयोजित योग कार्यक्रम का नेतृत्व किया।
6: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस अवसर पर कहा कि योग जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम का प्रभावी माध्यम है और स्वस्थ रहने के लिए सभी को नियमित रूप से योग करना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बोरिवली में आयोजित योग सत्र में हिस्सा लिया। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने मुंबई में योगाभ्यास किया। IIT बॉम्बे, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी तथा नेशनल थर्मल पार्क कॉरपोरेशन के मुख्यालय सहित कई संस्थानों ने भी योग दिवस मनाया। अंकिता आपटे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
2: गोवा के तालेगांव स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में योग दिवस का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, केंद्रीय विद्युत और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक सहित छात्र, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी और योग अभ्यासकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में कॉमन योग प्रोटोकॉल पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। पुदुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने योग कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योग 365 पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्य भर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। इधर राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली में भी योग सत्र का आयोजन किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस सत्र में भाग लिया। मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि योग को केवल वार्षिक आयोजन तक सीमित नहीं रखना चाहिए बल्कि इसे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कतर में भारतीय समुदाय और अन्य प्रवासी समूह के लगभग 2,000 से अधिक लोग एकत्रित हुए। वहीं बांग्लादेश के ढाका में भारतीय उच्चायोग के अंतर्गत इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास में भाग लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत आईएनएस धुनागिरी, संशोधक और अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं।
3: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
3: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
2: नौसेना के अनुसार इन तीनों पोतों पर 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। बीकानेर में लालगढ़ साबरमती ट्रेन को झंडी दिखाने के दौरान उन्होंने कहा कि ये परियोजना लोगों को बेहतर रेल संपर्क देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
7: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, सबके साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
2: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें।
8: मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। निर्भय होके बैठे, चिंता मुक्त होके बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
2: श्री प्रधान ने बताया कि सीबीएसई के शेष परीक्षा परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे।
8: सीबीएसई की जो रिजल्ट बचा हुआ है, इसे सीबीएसई के 17 लाख बच्चों से लगभग 15.5 लाख बच्चों की रिजल्ट आ चुकी है। जो बच्चे रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था वो काम लगभग पूरा हो चुका है। सीबीएसई जल्द ही उसको प्रकाशित करने वाला है।
2: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 6,550 रुपए के प्रोसेसिंग शुल्क पर 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इसे पूरी तरह से फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान का प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। श्री वेंस ने कहा कि दोनों देशों के बीच परमाणु मुद्दों पर बातचीत की रूपरेखा तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
9: ईरान के प्रतिनिधि मंडल का कहना है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि 60 दिनों के भीतर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका होर्मुज जलडमरों मध्य पर नए शुल्क लगा सकता है। बढ़ते तनाव के कारण शुक्रवार को प्रस्तावित वार्ता स्थगित कर दी गई थी। ईरानी प्रतिनिधि मंडल का नाम मिनाब 168 रखा गया है, जो स्कूल पर हुए हमले में मारे गए लोगों की स्मृति में है। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व संसद स्पीकर मोहम्मद

0: पुडुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश की संभावना है। बिहार और तेलंगाना के कुछ हिस्सों और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा विदर्भ में बुधवार तक लू चलने की संभावना व्यक्त की गई है। क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए के सामने 378 रन का लक्ष्य रखा है। दामुला के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ए को शानदार शुरुआत मिली। टीम बिना कोई विकेट गंवाए 130 रन के पार पहुंची। वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए केवल 29 गेंदों में 94 रन बनाए। उन्होंने महज 11 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की है। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष M.B. कलिबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ଏତେ ବେଳେ ଯାଏଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କଲୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ। ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିପାରିବେ ଟିକିଏ ପରେ।
2: ବନ୍ୟା ହେଉ ବା ମହାବାତ୍ୟା, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ
3: ଗାଁରୁ ସହର ଯାଏ सबु स्थान रे
2: आबाल वृद्ध बनिता समस्तंक पाई
3: जुआंग ओ सांतालंक ठरु बंडा एवं कोयांक जाए सबुरी भाषा रे
2: केवल आकाशवाणी।

0: समृद्ध ओडिशार स्वप्नको साकार करिबा पई उभय स्वास्थ्य और शिक्षा दिगरे अनेक जुगांतकारी पदक्षेप ग्रहण करिछंती लोकंक सरकार।
1: सुस्थ ओडिशा पई आयुष्मान भारत और गोपबंधु जन आरोग्य योजना माध्यम रे कोटी कोटी लोक पाउछंती कैशलेस चिकित्सार सुविधा। आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उन्नतीकरण भली अन्यान्य पदक्षेप लोकंक कल्याण पई निया जाउछि।
0: सेहि भली शिक्षा क्षेत्र रे गोदावरी समिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय माध्यम रे ग्रामांचल रे गुणात्मक प्राथमिक शिक्षा रे उन्नति करा जाउछि। शिशु टिकारे शिशु उपकृत ओ एससीबीसी छात्र छात्रिंक पई संरक्षण रहिछि। विद्यालय छात्र छात्रिंक पई मागणा बस यात्रा सुविधा एवं बाणीश्री दिशा स्वीकृति ओ सहाय भली योजना माध्यम रे शिक्षा क्षेत्र रो विकास मध्य करा जाइछि।
1: विकासर धारा ओडिसा सारा।
2: चोरी चोरी कथा चित्र रो ए गीत पई कंठदान करिछंती अलका याग्निक। गीत रचना आनंद बक्सी। संगीत निर्देशना साजित वाजिद।

0: आकाशवाणी समलपुर हेलो अनुरोध कार्यक्रम
1: हाँ नानी नमस्कार
0: नमस्कार भाई किए कहते
1: मुई लोकनाथ साहू भालुबाल विजयपुर बरगढ़ नु कहू जाए
0: लोकनाथ भाई आपण को आज कार्यक्रम को खूब सम्मान एवं आदर सहित स्वागत जनावी
1: प्रथम दादा गोटे कथा लगे करम सानी साहू
0: आज्ञा आग कौ गीतटा शुणवे कही दिंतु तापर आम कथ लगे
1: राया हिंदुस्तानी रो हम पूछो जरा पूछो से गीतटा दे देबे
0: ठीक अछि आउ कुहंतु नमस्कार भाई
2: हाँ नमस्कार नानी
0: हाँ आपण किए कहते परिचय दिंतु
2: ग्राम तिरंगामुंडा पोस्ट रामुंडा थाना विजयपुर जिला बड़गंज नानी
0: आज्ञा आपण को मध्य आज कार्यक्रम को खूब सम्मान सहित स्वागत जनावी आउ कार्यक्रम को फोन करिछंते सेति पई अशेष धन्यवाद जनावी आउ केमती अछंती कुहंतु
2: मैं भल अछ नानी आउ आपण माने केनता अछ
0: हाँ आमे भी भल अछु एमिति भगवान का कृपा रु आमे सब बेले आमे समस्ते भल थाउ आउ भल सब काम करबा आउ केमती कोन काम सब चली छी
2: हाँ काम सब सब त ठीक चली छी नानी चार बात सब काम चली छी
0: आज्ञा
2: बने नानी मे कते मतामत छे कहि नानी
0: आज्ञा कुहंतु
2: ए हमार जन आकाशवाणी समलपुर स्टूडियो केना मीडियम वेव रे तिके साउंड कम हो छी कि नानी
0: स्टूडियो मीडियम वेव रे कम आसु छी
3: शीतल
0: आज्ञा आज्ञा शीतल षष्ठी यात्रा देखि आसीथिले
3: हां बताली जे दिन शीतल षष्ठी यात्रा देखि
0: आज्ञा
3: शिव विवाह सबने बराती देखलो आ सब यात्रा बहुत मजा मजलिस थला आनी आरो छोड़लो
0: आज्ञा आ हम संबलपुर आकाशवाणी संबलपुर तरफ जो माने हमर हेइथिला सीधा प्रसारण शीतल षष्ठी यात्रा रो सुनिले
3: कोन संबलपुर जे सीधा प्रसारण सब जिनिस माने सब सुनलो
0: आज्ञा आज्ञा
3: आउ जन प्रोग्राम पति भी जेंडा दिया हला किते नाच संगीत रूप गेटा मन सब सुन सुना ने
0: ठीक अछि धन्यवाद भाई आपण हमर ई कार्यक्रम सब सुनु चंती आपण को पाई तो कार्यक्रम गुडी को प्रस्तुत करा जाउ छी एवं आपण को मतामत भी आमे निश्चित होरे चाहि थाउ आउ ठीक अछि ताले ए गीतटी सुनिबा
1: आय डेडिकेट करमा हमर स्पेशल डेडिकेट हमर गोविंद मेहर रो आज बर्थडे
0: ताहले कार्यक्रम तरफ आकाशवाणी तरफ गोविंद भाई की जन्मदिन अनेक अनेक शुभेच्छा जनाउ छु आज्ञा
1: आउ सब श्रोता मन को हमर डेडिकेट है
0: निश्चित हवरे डेडिकेट करी दबा
2: हां नानी नानी हमर कहले के नानी
0: आज्ञा
2: हां एरा लोकनाथ साहू लोकनाथ प्रधान सेवाराम मेहर सुभाष साहू कृष्ण पटेल नारायण मेहर गोविंद मेहर राधाकांत भई भरतचरण भई राजेन्द्र भई तपर प्रशांत कुमारी पुष्पांजलि कुमारी शंकर मेहर देवराज मेहर लिंगराज मेहर सोना प्रभाकर नागपात्र दीक्षा गोपाल वृषभ गैर चित्रसन सवर मनोज पटेल क्षमा सागर साहू हिमांचल सवर आकाश साहू विकास साहू लिपुन साहू लिपि साहू नानी
0: बहुत सुंदर आपण कहिथिबा ए समस्त श्रोता भाई भोणी मानको ए गीतटी डेडिकेट कर दउछु आ एहा गर्वर विषय जे आमरो श्रोता भाई भोणी माने आकाशवाणी को ने केते सुंदर भाबरे बांधी होइछंती स्नेह श्रद्धा रा सहित सेटा भी बहुत बढ़िया कथा
2: बोली जते नि आनंद मेर के हमर फेस्टिवल पूरा पूरा बहुत धन्यवाद
0: निश्चित भाबरे ताले गीतटी सुनिबा
1: हां नाले
0: आज्ञा नमस्कार,
1: नमस्कार।

0: आकाशवाणी संबलपुर, हेलो अनुरोध कार्यक्रम।
1: हेलो हेलो मैम, हेलो आकाशवाणी संबलपुर, हेलो मैम नमस्कार, गुड मॉर्निंग।
0: वेरी गुड मॉर्निंग, किए कहतले बोनी
1: मैम? फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी हैप्पी संडे एंड समस्त को हैप्पी म्यूजिक डे। जे वर्ल्ड स्ट्रेस फ्री थिबो से स्ट्रेस मन कर थिबो से म्यूजिक सुनंतु वन काइंड ऑफ थेरेपी काम दबो। एंड आज हैप्पी योगा डे भी समस्त को योगा दिवस रे बहुत बहुत शुभ शुभ कामना अभिनंदन। योगा करंतु निरोग रहंतु। एंड आ गोटे कथा है हैप्पी फादर्स डे टू माय डैड, आई लव माय डैड वेरी मच, ही इज बेस्ट। एंड दिस इज मामा मिश्रा, आई एम फ्रॉम भुवनेश्वर।
0: अरे वाह, आउ को गीत सुनिबे कहले
1: मैम? आपण गोटे दादी को माने बापा को ऊपर गोटे किछि गीत आपण को पसंद रे डेडिकेट कर दियंतु मो तरफ मो भाईना तरफ दादी को पै।
0: आउ केमती अछंती आपण?
1: मैम आपण तो फर्स्ट टाइम कथा होची, बहुत भल लागला आपण मते चांस देछंती। एते सारा आज दिन अछि समस्त को मो कहि पाली, विश करि पाली एंड मो बहुत भल अछि। ठीक गरम कमीची एंड मते लागु छि एसी एसी रे मो अछि। आपण केमती अछंती?
0: अरे वाह, आपण एसी रे अछंती, बहुत बढ़िया। गरम तो सेमती होउची। अच्छा
1: आपण आपण केमती अछंती?
0: हो भल अछि। राजा भैया कथा चित्र रे गीतटी सुनिबा।
1: ओके मैम आपण सुनै दियौ तो डेडिकेट कर देबे मो फैमिली को। ठीक अछि?
0: ठीक अछि। आपण कहिथिबा आपण को परिवार को एवं समस्त को आपण कर जिए जिए साथी अछंती तांकु ए गीतटी डेडिकेट कर दउछु।
1: थैंक यू मैम,
0: धन्यवाद भौणी आपण फोन करिसेंदे सेति पई कार्यक्रम तरफ एवं समस्त तरफ आकाशवाणी तरफ अशेष धन्यवाद जनावी।
1: थैंक यू मैम, रही मैम नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: से मैम ने बोला अभी कि मिडल
1: आकाशवाणी कटक आपण माने आंचलिक संवाद सुनि परिबे विज्ञापन परे
2: बन्या हेउ बा महाबात्या सबु परिस्थिति रे
3: गारु सहर जाए सबु स्थान रे
2: आबाल वृद्ध बनिता समस्तंक पाई
3: जुआंग ओ सांतालंक ठारु बंडा एवं कोयांक जाए सबुरी भाषा रे
2: केवल आकाशवाणी।

0: दादा जोहार को
1: जोहार रे बेन जोहार आ बने बने तो
0: हां दादा सब बने बने जे गोटे कथाटी पछामे बोलथिली गो
1: का कथा
0: हे सखाले पूरा धक धक हे करी दौड़ी

0: आकाशवाणी संबलपुर हिंदी संवाद सुनोर से आकाशवाणी दिल्ली
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरिया पलायम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता और भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए को 66 रन से हराकर त्रिकोणीय राष्ट्र ए श्रृंखला अपने नाम की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रे शामिल हैं।
2: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जल मार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
2: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं,

0: है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं और भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
0: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योग अभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
0: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
1: विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: डेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई।
2: परीक्षा में शामिल 10,000 से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं। परीक्षा केंद्रों पर आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन, सीसीटीवी निगरानी, सिग्नल जैमर और राज्य पुलिस की मदद से दो स्तरीय तलाशी व्यवस्था लागू की गई थी। सीसीटीवी निगरानी के लिए कंट्रोल और कमांड सेंटर, एनटीए मुख्यालय, शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 34 केंद्रीय संस्थानों, सभी राज्यों तथा जिलाधिकारी कार्यालयों में स्थापित किए गए थे। एनटीए ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देश भर में लगभग 7 लाख पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
1: तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24

0: 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने खातीपुरा में मेगा कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और कई रेलवे स्टेशनों पर उन्नत यात्री सुविधाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर रेल मंत्री ने कहा कि देश भर में रेल अवसंरचना और सेवाओं में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
1: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा, क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, के साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर इस वर्ष दिसंबर तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि ये समझौता अगले वर्ष फरवरी या मार्च तक लागू हो सकता है। आज मुंबई में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारतीय कारोबारियों को यूरोप के लगभग पूरे बाजार तक बेहद कम या शून्य सीमा शुल्क पर पहुंच मिलेगी और इससे भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में बड़े पैमाने पर अवैध लौह अयस्क खनन से जुड़े मामले में सलगांवकर समूह और उससे जुड़े एवीएस समूह की लगभग 1,000 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने मुंबई स्थित एक फर्म के साझेदारों से जुड़े कई परिसरों और अन्य स्थानों पर 62,42,00,000 रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी के संबंध में तलाश अभियान चलाया है। सीबीआई ने कहा कि मुंबई में इंडियन बैंक की SAM शाखा की शिकायत पर इस महीने की 18 तारीख को मामला दर्ज होने के बाद तलाश अभियान चलाया गया। एजेंसी ने फर्म और उसके साझेदारों, अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और अज्ञात निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। ये वार्ता खतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। अमेरिका और ईरान के बीच पहले ही 14 सूत्री समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम की बात कही गई है, लेकिन इसराइल इस सीधे समझौते का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसने लेबनान में ईरान समर्थित गुट हिजबुल्ला पर हमले जारी रखे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान ने स्पष्ट किया है कि यदि बातचीत सफल होती है और प्रारंभिक समझौता लागू होता है तो कतर के पास ईरान की फ्रीज की गई 6 अरब डॉलर की धनराशि ईरान को वापस दिए जाएंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट INS तरकश कल मॉरिशस के पोर्ट लुइस पहुंचा। ये जहाज दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपने परिचालन अभियान के तहत तैनात है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस तैनाती का उद्देश्य समुद्री सहयोग को मजबूत करना और भारत तथा मॉरिशस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल और तेलंगाना में अगले 4 से 5 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। राजस्थान, बिहार, झारखंड और ओडिशा में कल तक गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। और अब बात खेलों की। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने FIH महिला प्रो लीग में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। दाम्बुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हरा दिया है। भारत के 378 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 311 रन पर ही सिमट गई। वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 7 विकेट पर 158 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने सर्वाधिक 31 रन की पारी खेली। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट UG पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरिया पालियम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: कौन कहते हाँ
1: रे से पूर्णांग योजना प्रस्तुत कर गोटाए पेशादार खुनी हाथ में देखा आई योजना द्वारा मत हत्या करने भारी सहज ही पड़ता था से कौन है कहलु
0: कौन
1: भाग्यवशत ये योजना मो हाथ को आसीगला पेशादार खुनी जरिया योजनाकार सब योजना भंडूर हो गला बिछरा ता रक्त मुखा मुहर रंग फिक्का पड़गला
0: असुविधा कर
1: बुझल नरहरी गोटे योजना थे भंडूर हो गले कम लगे ढेर मुस्किल हुए पुणी विश्वम्बर चौधरी आगे
0: सब तो फसल फाटी गला फेणी से कागज रखते क्या
1: अतीतर एमती अनेक किसी थाए जहाँ पाखे रखिले खूब खुशी लगे अतीतर कार्यकलाप को मन पकेले गर्व लगे से अतीतर चेना स्मृति ये जो मान मृत्यु हो जा मृतदेह मो पाखे पड़ी रही
0: कौन पढ़ुदे
1: मो बाघर निमंत्रण पत्र
0: निज बाघर निमंत्रण पत्र पढ़ुदे
1: किछि नाही रे नरहरी किछि नाही केवल अच्छे अनेक जगह भांगी जाइथिबा गोटे पुराणा पाचेरी जो भंगा पाचेरी दे सहर रो गाई गोरु माने पसी आसंती गोटे अरमा जंगल भितर को से अरमा जंगल भितर ए अधा भंगा उआस आ उआस भितर रहिछि गोटे विगत जौवना पाषाण प्रतिमा रेली
2: बाबा तमे औषध खाइलणी
1: ओहो नरहरी आसिले मते औषध तबो तू काहे के इते व्यस्त होछु कहिलु
2: मु व्यस्त हेबिनी त के व्यस्त हबो कहिला औषध पत्र न खाई एटी नरहरी संग अजथा बकर बकर हबा कोन दरकार सुने
1: अजथा बकर बकर को गुडा को
2: ए पुरणा कथा को गोळे घंटी निज भितरे टेंशन क्रिएट करबा कोन दरकार कहिला डॉक्टर सब बेले कहउचंती परा अननेसरी टेंशन जको तमरा ब्लड प्रेशर बढुची बोली
1: आउ एठी मो आगरे जहा सब घटुची से सब कोन आखी बुची सही जिबी
2: वास्तवता को सही जिबाटा भलो बाबा ए राती अधरे गुडाय पुरणा चिट्ठी को धरी ता उपरे तर्जमा जलिची नै से गुडा को चीरी देले सब ठीक हि जिवो
1: अरे रे नेली ता भीतर तोटानीला नोटिस ता होची परा
2: हां सेटा को चीरी देले सब समाधान हि जिवो जाओ से तोटाटा कोन जे मिलुची सेत्र के जानी तमको मु किछि बुझि पारुनी
1: कोनला तोटाटा नीलाम हिजबो तू ए जाउछु
2: आ बुझीबा दरकार नै बुझलो बाबा ए जागा ए भंगाउआस खंडिया पचरी आ ए उजुडा बगीचाटा को बिकि दे समुद्र कुळे गोटे बंगला तयार करबो बोली बारंबार कहलिनी हेले ए सुकिला नई कुळे ए भंगा रंगछडा उआस रे की मोह लागिछ के जानी
1: कोन कहिलु नई कुळे उठि जाई समुद्र कुळे घर कर रहिबी नई समुद्र रे मिसि तार निजत्व हरिला परी मु काहे केते पुरुषर उआस बिक्री करी थाई जेबी समुद्र कुळे रे बंगला तयार करबाकु चौधरी वंशर इज्जत को लोप करबाकु ना मो परिबिनी से कथा मो परिबिनी ताछडा प्रभु जगन्नाथ को छोड़ी अन्य कोठी रहिबा मो पक्षे जमा संभव न
2: जदी तोटाए भंगा उआस आ तमा जगन्नाथ को पाखरु तमा मोह टूटी परु ना तेबे गां को जाई किछि चासो जमी बिक्री कर दियो आ सेही पैसा रे तोटा मुकुले एणो
1: कोटे पट छिड़ी आ कोटे पट बढ़िबा चौधरी वंश रे इतिहास रे नाही वंश रो प्रत्येक जिनिस आज पर्यंत बढ़ी आसछि सिना किंतु छिड़ीनी
2: एणी कि छिड़ीबा आरंभ हो गला बाबा थरे छिड़ीबा आरंभ हेले ताको केही रोकी पारिबेनी
1: मो तोटा मुकुले आनिबे
2: प्रत्येक जिनिस रो बढ़िबार बेग ठारु छिड़ीबार बेग खूब अधिक
1: छिड़ीबार बेग को मु संपूर्ण भाबे रोकी देबी
2: आज कांथ छिड़ुची
1: ना नरहरी आज सका कांथरे ढीरा दबा पई मुलिया लगे थिला जाई छी देखि आसीबा को
2: ढीरा दे कांथटा को केते दिन संभाली बाबा
1: मु बंची थिबा जाय
2: आंबतटा नीला मेई जीव
1: हमरेंद्र पाखो को टंका पई फोन करी छी
2: सेसरे चौधरी वंशरा इष्टदेव जगन्नाथ को रास्ता कड़ गच्छमूल रे पड़िबे
1: देली

और अब हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत प्रस्तुत है राग दरबारी कन्नड़ा शेख फरहान अमीन के जरिए।

अभी आपने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत सुना राग दरबारी कन्नड़ा शेख फहीम अमीन के जरिए। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

0: ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है और अब से कुछ ही क्षण बाद समाचार होंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इसमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट, INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
2: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जल मार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि योग विभिन्न देशों के सभी क्षेत्रों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण के लिए एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में योग दिवस और अधिक लोगों को योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेगा। नीट UG पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। एजेंसी ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देशभर में लगभग 7 लाख पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सीफूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने घटना में हुई जान माल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री C. Joseph Vijay ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति JD Vance कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर मालिक गलीवफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघाची कर रहे हैं। यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने FIH महिला प्रो लीग में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। लाल रिम सियामी को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हिंदी संवाद सुनले रिलेगुलु आकाशवाणी दिल्ली केन्द्ररु आकाशवाणी संबलपुर श्रोतु संबलपुरी मुख्य संवाद
4: आकाशवाणी संबलपुर याचिनि मुख्य खबर संगे मुई तर्पण कुमार प्रधान 2047 विकसित भारत गठन लक्ष्य पूरण करबार लागि विकास सबु वर्ग आ व्यक्तिंकर पाके पहुँचबार आवश्यकता रहिछे। राणी दुर्गावती विश्वविद्यालय 36वां समावर्तन उत्सवति उद्बोधन देकरी कहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुस्थ आयु लागि योग वार्ता नेकरी देश आउ देश बाहर आज पालित होला आंतर्जातिक योग दिवस मानसिक आउ शारीरिक सुस्थता लागि योग सबुठानु जरूरी कहले प्रधानमंत्री सुस्थ आउ चापमुक्त जीवन लागि वयस्क युव आउ छात्र सबको नियमित योग करबार लागि आह्वान देले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी शरीर मन आउ आत्मा भितर तालमेल रखबार थी योग गोटे श्रेष्ठ माध्यम आउ कहले केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान जातीय परीक्षण संस्था एनटीए तरफ परिचालित नीट यूजी पुनः प्रवेशिका परीक्षा आज है अनुष्ठित भारतीय नौसेनाथी सामिल है स्वदेशी निर्मित तीन टा युद्ध जहाज आईएनएस दुनागिरी आईएनएस संशोधक आउ आईएनएस अग्रह के करागला सामिल तमिलनाडु ठाने अमोनिया गैस दुर्घटना थी 7 जन मृत आउ 70 जन होइछन आहत मृतक मानक लगे शोक प्रकाश कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी मुख्यमंत्री निर्देश तमिलनाडुर मुख्य सचिव सहित कथा हेले ओडिशा मुख्य सचिव दुर्घटनाग्रस्त ओडिया श्रमिक मानक लगे साहज लगे तमिलनाडु गस्त कले 3 जन वरिष्ठ अधिकारी राज्य सरकार को 2 बछर पूर्ति अवसर आएगा 24 तारीख नु सारा राज्य हेबा सहरांचल जनसंकल्प कार्यक्रम राज्य युक्त 2 श्रेणी थी ना लेखा लगे आवेदन प्रक्रिया रही जारी मास 30 तारीख तक छात्र छात्री मैंने अनलाइन जरिए करिपारे आवेदन एफआईएच हकी महिला नेशंस कप विजय भारतीय महिला हकी दल के अभिनंदन जनाले प्रधानमंत्री आईसीसी महिला टी20 विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिता थी भारत और दक्षिण आफ्रिका भितर चली मैच दक्षिण आफ्रिका दल जितला 6 विकेट थी। आज मुख्य खबर एनु शेष होगा जुहार
3: श्रोता शुणुले सम्बलपुरी मुख्य संवाद आकाशवाणी सम्बलपुर चलित अधिवेशन को शेष करने पूर्व शुणु आसंता प्रथम अधिवेशन प्रसारित होगा कार्यक्रम संपर्क सूचना सका 6:30 आज भावना उपस्थापना मनोज कुमार पूजारी सम्बलपुरी आंचलिक संवाद सका 6:47 समय सका 7:10 स्वास्थ्य सूचन रही अंशुघात काहीकि हुए और तार प्रतिकार ए विषय कहे डाक्तर सुधांशु शेखर पंडा चाषर हाल 7:25 समय 7:30 परिवेश सूचन शुणिबे संकट रे आम पृथ्वी ए विषय कहे डॉक्टर समापिका दास सुगम संगीतर विशेष कार्यक्रम सुरंजन सका 7:35 समय कंठशिल्पी ज्योतिनारायणी मुदाली एवं मानस कुमार दत्त गीत रचना शिरीश चंद्र पूजारी संगीत संयोजना प्रफुल्ल कुमार मित्र 7:50 संबलपुरी गीत कंठशिल्पी विलम्ब कुमार एवं मोहिनी मोहन रथ से 8:30 संबलपुरी गीतर कार्यक्रम कंठशिल्पी पूर्णिमा नंद एवं गोपाल साहू 8:45 सुगम संगीत कंठशिल्पी स्वागत महापात्र एवं लाल अनंग कुमार साईदेव दिन 11:05 संबलपुरी गीतर कार्यक्रम कंठशिल्पी निराकार देहरी चिंतामणि साहू सनातन सुना एवं मकरध्वज पटेल हिंदी कथचित्र गीतर कार्यक्रम खुला झरका दिन 11:30 समय एवं दिन 12 समय बातायन 12:30 एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत प्रायोजित कार्यक्रम दिन 1:05 सुगम संगीतर कार्यक्रम शिल्पी जयदेव तंती पल्लवी नंद एवं कालिकिंकर चेना घर संसार कार्यक्रम दिन 1:20 समय अपराह 3 किसान संप्रदायर सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवनधारा उपर आधारित किसान भाषार कार्यक्रम माकापुप झकाझका प्रयोजना एवं उपस्थापना संतोष पिंग अपराह 4:00